एक और कलिया हजार, गम राहत एक और कलिया हजार। करे किस किस को प्यार लगा मीना बजा, करे किस किस को प्यार लगा मीना।

चल पड़े अरमान, अरमान चल पड़े अरमान, सीधे साधे दिल पे आके तिरछे लगे निशान, सीधे साधे।

0: सो है कद है लंबा जैसे खंबा
1: उल्लू जैसे मैन है
0: गाल पिचके बाल चिपके
1: आप जेंटलमैन है
0: चल दिए अंग्रेज अपने सूट इनको दे गए
1: भाई सूट इनको दे गए।

करे किस किस का प्यार लगा मीना बाजार, करे किस किस का प्यार लगा मीना बाजार। कभी तो दिल में उठा तूफान, कभी तो दिल में उठा तूफान, और मचल पड़े अरमान, और मचल पड़े अरमान। सीधे साधे दिल पे आके तिरछे लगे निशान, सीधे साधे।

0: शेष है। कद है लंबा जैसे खंबा,
1: जैसे मैन है।
0: गाल पिचके बाल चिपके,
1: आप जेंटलमैन है।
0: चल दिए अंग्रेज अपने सूट इनको दे गए,
1: भाई सूट इनको दे गए।
0: जब गए बाहर विदेशी
1: बूट इनको दे गए।
2: क्या दे गए।

0: सरजी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है? कौन?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।
1: हाँ।